फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Saturday nights with Nads.
1: Once you start watching, you do not stop.
0: Friday nights with Shivy.
2: Just want to relax and we just want to... You don't want to do too much thinking.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
1: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
2: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8 p.m. on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर। अगर तो आप ये सोच रहे हैं ना कि हाय शबनम साही छुट्टी से वापस क्या आई, वो तो इस गाने को साफ भूल गई, साफ भूल गई। If this is what you're thinking, you don't know me at all, do you?

दिस इज व्हाट यू कॉल अ गोल्डन लेगेसी, जब शायद आपके नाम से ज्यादा लोग आपके काम को याद करते हैं. ओरिजिनली बाय मैडम नूर जहां, गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर अ न्यू जनरेशन बाय नाइट वॉइड द ईडीएम मिक्स. माही किथे रह गया.

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 10:50 on a Wednesday आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ मेरा और आपका साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 के बीच विकी इन ट्विकनम मिस्टर खान थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस मिस्टर खान इज गोइंग टू सेंड मी हिज शेयर इन द नेक्स्ट आवर आई एम होपिंग नशतर कौर थैंक यू सो मच आई हैड अ वंडरफुल टाइम अवे ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट टू डॉली पार्टन पोरिंग इन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो लोग अपने लिए जीते हैं ना वो तो जीते हैं लेकिन अपने हिस्से की खुशियां अपनी दौलत अपने प्रिविलेजेस एंड कंफर्ट्स जो लोग सेल्फलेसली दूसरों के साथ बांटते हैं शायद उसी को जीना कहते हैं राइट रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पावर डॉली पार्टन गुड मॉर्निंग

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Jhoomein Jo Pathaan on Sunrise. Now, I just really, really want King to be good. Because, as you know, Jhoomein and Pathaan were just not my cup of tea. So I really want King to be good. Please, can it be? I don't know. I have no idea what it's going to be like.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस
0: सो किंग स्टार्स सुहाना एंड दीपिका एंड अनिल कपूर अभिषेक बच्चन जैकी श्रॉफ आई हैव हर्ड रानी मुखर्जी इज इन इट बट आई एम अस्यूमिंग इट्स गोना बी अ कैमियो जयदीप अलावत अर्शद वारसी राघव जुयाल ऑब्वियसली Abhay Verma, Saurabh Shukla, Akshay Oberoi and Karanveer Malhotra. Now, there are also reports of Ranveer Singh appearing in King, although details of his role are being kept under wraps. King is directed by